0: चखाय बहुत होए
1: बदसाय उचताओ
0: उचे उपरुचनाओ
1: एवर उचे हो बेकोए
0: तिसुचे को जाने सोए
1: जेवर आप जने आप
0: नानक नदरी करमी।

अर्घ्रन में चिकार्घ्रन में सतग्रन में श्री गुरुदेव नमें, अर्घ्रन में चिकार्घ्रन में सतग्रन में श्री गुरुदेव नमें, अर्घ्रन में चिकार्घ्रन में सतग्रन में श्री गुरुदेव नमें। We'll begin with pranayam. Bring your fingers interlaced, palms facing down, and we will inhale with three strokes, raising the hands from the diaphragm first to the throat, heart, throat, brow point, and then forcefully down in one stroke. So it's inhale in three parts, exhale forcefully in one part. Just for 2 minutes.